राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरव करही पंच रागनी संग उच्च रही प्रथम पैरवी बिलावली पुन्या की गावह मंगली पुनः लेखी

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नब्बे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अधोख हरि अधवाख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतएव हरि अभय हरि अजय हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्त्वं भजस्त्वं रटस्त्वं ठटस्त्वं जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभातुहि अछूतुहि अछातुहि।

शिव से तपस्या ब्रह्मा बेचारे सनत कुमार सी तपस्या अनंत है ज्ञान के भीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मार बिछन के ते वेद पुराण के ते सिमर समूहन के होए हुए बिताए है मुंदी मदार के ते अश्वनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है पीरो पिकामर के ते कने न परत एते भूमि ते होगा फिर भूमि ही मिले है जोगी ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छतरी की छाया कई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है मान से मही पगरी कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते हैं शीर दे करे अनेक तोप ची कपट बेस पोस्ती अनेक दानी आवत है शीर्ष को कहाँ भयो मन जो पे कड़त अनेक डंड सोतुना डंडावत अष्टांग अतिथिस का कहाँ भयो रोगी जो पे डारी रे उर्ध मुख मानते न मुड निहरायो आद इस का कामना आदि सदा दामना पर बीन एक भावना बीन कैसे पावे जगदीश को शीर्ष पट कत का जाके कान में खजूरा धसा मुंडे छट कत मित्र पुत्र हूं को शोक सा आको चरिया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमिया और दूसरों ना भूख सो कहाँ भयो भेड़ जो घसत ब्रिशीस ब्रिछन सो माटी को भचिया बोल पूछ रिजा जोग सो कामना दिन काम क्रोध में पर बिने के भावना बिन कैसे बेटे पर लोग सो नाचो ही करत मोर दादर कर शूर सदा घन घूर घन करो ही करत है एक पाए टटे सदा बन में रहत ब्रिछ फूक फूक पाव भूम श्राव धरत है पहन अनेक जुग एक ठोर बास करे का गौर ची देश देश विचरत है ज्ञान के भीन महादान में न हुजालीन भावना एकीन दिन कैसे के तरत है जिसे एक स्वांगी को जोगिया बरागी बना कमू सन्यास वेश बान का दिखा वही को पौन हानि को बैठे लाए तारी को लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावे को ब्रह्मचारी को हाथ पे लगावे बारी को

ਪੰਜ ਬਾਰ ਗਿਦਰ ਪੁਕਾਰ ਪਰ ਸੀਤ ਕਾਲ ਚਰੋ ਗਧ ਅਨੇਕ ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਹੇ ਕਾਂਬ ਜਪ ਕਲਵਤ ਰਿਓ ਕਾਂਸ ਬੀਚ ਚੀਰ ਚੀਰ ਚੋਟਾ ਕੁਠਾਰਨ ਸੁਮਾਰ ਹੇ ਕਾਂਬ ਫਸ ਡਰ ਬੁੜ ਜੜ ਗੰਗ ਧਾਰ ਡਾਰ ਡਾਰ ਫਸ ਡਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਾਰ ਹੇ ਡੁਬੇ ਨਰਕ ਧਾਰ ਮੁੜ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵਨਾ ਬਿਹਨ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੇ ਤਾਪ ਕੇ ਸਹਿਤ ਜੁਪ ਪਾਈਏ ਅਤਾਪ ਨਾਥ ਤਾਪਨਾ ਨੇਕ ਤਨ ਗਾਇਲ ਸਹਤ ਹੈ ਜਾਪ ਕੇ ਗੀਤ ਜੁਪ ਪਾਈਏ ਅਤ ਅਜਾਪ ਦੇਉ ਪੂਦਨਾ ਸਦੀਉ ਤੂੰ ਤੂੰ ਉਚਿਰਤ ਹੈ ਨਵ ਕੇ ਉੜਤ ਜੁਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਈਅਤ ਅਨਲ ਆਕਾਸ ਪੰਛ ਡੋਲ ਵੋ ਕਰਤ ਹੈ ਆਗਮ ਜਰਤ ਗਤ ਰਾਂਡ ਕੀ ਪਰਤ ਕਰ ਪਤਾਲ ਕੇ ਬਾਸੀ ਕਿਉਂ ਭੁਜੰਗ ਨਾ ਤਰਤ ਹੈ को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अन मानबो हिंदू तुरक को राफसी इमाम साफी मानस की जा सब एक पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो देव राम सी सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को ब्रह्मा है देवता दे जिस गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नाने के काने के दह के बान खाक बद आदस और आब कोर लाव है अल अभेक सुई पुरानो कुरान हुई एक उस रूप से वह एक ही बनाव है जैसे एक आग दिकनु का कोट आग हुटे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पुरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे जैसे एक नदित करंग तुट उपजित है पान के तरंग से वे पान ही कहेंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे केते कछ माछ केते उनको करत भच केते अछ वछ वे सपच उड़ जाएंगे केतन बीच अछ पच को करेंगे भच के

तेज अतेज में अतेज से तेज लीन ताहे ते उपज सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के बरमाई फिरत है। करवा सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख भरत है। गायन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है। सुधारे देवता फिर उधारे दानु पड़े बुधारे बुधक पर बुधारे जापसी। घसारे चंदन लगाए हरे चुआचार पूजा हरे पान चढ़ाए हरे लापसी। गाय हरे गोरन मनाए हरे माटी मट लिपारे भितन लगाए हरे छापसी। गाय हरे गंधर्व बजाए हरे

न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहन ग्रोहंग न द्रोहंग न दुखंग न कर्मंग न भरमंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग सतंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सतरंग न भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाए कछु रूप रेखंग कहां वास्तव को फिर कौन भेखंग कहां नाम तक को कहां के कहावै कहां के बखान हो कह मन आवै न रुगंग न सुगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न भरमंग न जन्मंग न जातंग अदवेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे पर्यंग पराब्रह्म प्रज्ञा प्रकाशी अच्छेदंग अच्छेयाद अदवे अपनासी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किते किशन से कीट कोटे उपाए उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अदवे अपनासी पर्यंग पराब्रह्म पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छे विभूते न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असादे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाते न जाते न पाते न सतरे न मित्रे सुभूते भविके भवाने अचित्रे न रायंग न रंकंग न उपंग न रूपंग न रेखांग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखांग न सतरांग न मित्रांग न नेहंग न गेहांग सदैव सदा सर्व सर्वत्र सनेहांग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अच्छेयात अदवे अजोहांग न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्यादंग न रोगंग न सुगंग अभय निर्विखादंग अच्छेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भरमंग सदैव सदा सिद्ध प्रदंग स्वरूपे नमो एक रूपे निरुक्त प्रभात अनुक्त प्रतापे अद्युत अच्छेयात अद्युत अथापे विभक्त अच्छेयात अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखंग न साकंग परेंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न शर्मंग न साके न भरमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सतंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे कहूँ कांज के मांज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म अलूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाजता में कहूँ अक्षर के पत्थर के सिद्ध सादे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूँ अंग के रंग के संग देके कहूँ जंग के रंग के रंग रंग पेके कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित रूपा कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपांग कहूँ नेह गृह कहूँ देह दुखांग कहूँ औषधि को रोग रोग के सुख सुखांग कहूँ देव विद्या कहूँ दत्त बाणी कहूँ गजश गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राशि सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग हरता कहूँ जोग जुगतांग कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतांग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राशि कहूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम ब्यानी कहूँ को की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारा कहूँ भद्र रूपांग कहूँ मदर पानी कहूँ छुद स्वरूपांग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपांग कहूँ चेष्टा चर चित्र स्वरूपांग कहूँ परम पुराण को पार पावै कहूँ पठ पुराण के गीत गावै कहूँ शुद्ध सिख कहूँ ब्रह्म धर्म अवस्था को बाल कर्मांग कहूँ ज्वाल स्वरूपांग जरा रथ देहांग कहूँ नेह देह कहूँ त्याग गृहांग कहूँ जोग भोगांग कहूँ रोग रागांग कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्यागांग कहूँ राज संग कहूँ राज साजंग कहूँ राज रीतांग कहूँ पूर्ण प्रज्ञाप कहूँ प्रेम परम प्रीतांग कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पल्लवी पस्त्री संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ दय देव पानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ चंद्र रीतांग कहूँ छत्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा को पिंगला चरण गीत चर्चा को बिन विद्या को गान गीतांग को मलिज भक्या को बेदरीतांग को नित विद्या को नाग बाने को गारडू गुड़ कथा कहानी को अच्छरा पच्छरा मच्छरा हो को वीर विद्या अभुतंग प्रभा हो को चल चला धरे छत्र धारे को राज साजंग धी राजा धिकारे नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछयाद अदवै विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा अद्वै अनाश अंतुर तेज अनखुट भंडार अदाता दुन सर्व प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता हरि भरता सनाद आसन डोर अनुभूत करम नाता दयाल अनुभूत धर्म ये सत्र मित्र ने जन्म जा जय पुत्र प्रात ने मित्र मात ये करम ब्रह्म ने धर्म ध्यान जय नेह के ने व्योदान ये जात पात ने सत्र मित्र जय नेह के ने छह क्षेत्र जय रंग रूप ने राख रेग जय जन्म जात ने भ्रम भेग ये करम भ्रम ने जात पात ने नेह के ने पितृ मात ये नाम थाम ने बर्ग ब्याद ये रोग सुख ने सतसाद ये त्रास वास ने देह नाश ये आत अंत ने रूप रास ये रोग सुख ने जुग जुगत ये त्रास आस ने भूम भुगत ये काल ब्याल कटे ने अंग अच्छा स्वरूप अख अभंग ये नेत ने चरंद भेद ये अलग रूप कथत कतेव ये अलग रूप आसन ढोल ये अमित अच्छा तोल ये ध्यान काज मन जन अनंत के कलप जोग सा दंत दुरांत तन सिद्ध काम प्रकाश हंत ये कलप एक आसन वितांत ये जतन योग विद्या विचार साधन तत् पावत न पार के उर्द पाद देश ब्रह्मांत के उर्द मत पाव चुलांत के सिमरत शास उचरंद भेद के को काव कथत कतेव के अग्न होत्र की पौन हार के करत कोट मृत को आहार के करत साक पत्र भच ने तद देह होत पताच के गीत गान गंधर्व रीत के वेद शास विद्या पतीत को वेद ऋत ज्ञात कराम को अग्न होत को

मत्सवरम हे अग्निहोत्र के देश देव करम हे करत वीर विद्या विचार नित दितास पायतना पार हो राजरित को योग धरम हे शिवरत शास्त्र सो करम न्यूलियात करम को हसदान को असमेत जमखो बखान हो करत ब्रह्म विद्या विचार को योग रित को वृद्ध चार हो करत जच गंधर बगान को धूप दीप को अर्घदान को पितृव करम को बेदरीत को नृत नाच को गान गीत हो करत शास्त्र विचार कि भजत एक पग निराधार के ने दे के दे के वास के ब्रह्म देश देश अनुदास के जल निवास के अगन ताप के जपत उर्द लटकांत जाप के जपत जो कल्पन प्रजांत नहीं तदर तास पायत नयांत के करत कुड़ विद्या विचार।

तप ताप सर्व जल रुतना धन उचित इंद्र कुमेर बलांग अनखेद स्वरूप अभेद अभियांग अनखंड भूत अच्छेद अछियांग अनकाल अपार दियाल अस्वांग जे ठट्यंग मेर पवाकाश भुयांग अनखंड अमंड प्रचंड रंग जे रचिंग देव देव बरांग सबकीनी दीन जमीन जमा ये रचिंग सर्व मकीन मका ये राग न रूप न रेख रुगांग ये ताप न साप न सुख सुखांग ये रोग न सुख न भोग भुयांग ये खेद न भेद न छेद छियांग ये जात न पात न माधि पितांग ये रचिंग छत्र छत्र शितांग ये राग न रेख न रोग भणांग ये देख न दाख न दो गणांग ये अंड ते ब्रह्मण रचियो दस चार किरण खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंदूर बिंद न गिंद न गंग ये श्री जच गंधर्व फणेन्द्र पुजांग रज देव देव भिन्न रंग नृपाल नृपाल कराल दृगांग के कीट पतंग भुजंग निरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजांग ये देव देव सराधि पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन जो जुतंग ये तातन मातन भूत भ्रासुतंग ये रोग न सुख न भोग भुवंग ये जंप किन्नर जच भुजांग नर नानप सिंह जाय किए कण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गणांग बभूत भूक भुवान तुवांग ये अंडज जे सेत जेर जंग रच भूम आकाश पताल जिलंग रच पावक पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फर फूल कलि वो मेर आकाश निवासितांग रज रोज एकादश चंद्र प्रतांग दुत चंद दिनी सदीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए छत्र पाए छपाए दिए ये लोक चतुर चार चे नरगन नरगंधर्व देव देव चे अंधुत अभूत अछूत मतंग अनगात अभ्याद नाद गतंग अनखेद अभेद अछिन्न रंग जे चार चतुर चक्र पिरंग ये राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आश्रंग जे बंद देव देव निरंग गन्नर गंजा छिप जंग रचे मणक माणक मोती लाल सुचे अनबंज प्रभा अनगंज प्रतंग जय पारन बाद पूर्व मतंग अनखंड सुर पर दंड प्रभा ये जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुसिंध अधमुख ताप तपै कई कल्पन लो तप ताप करै नैने कृपा निध पान परै जय

अचेत है, अभेद है, रंग है, न रूप रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदि धर्म क्रम पर भीन जंत्र मंत्र तंत्र जागो आदि अपार हस्त किंड बसाय सब डोर में निर्धार जात पात न ता जागो मंत्र मात्र मित्र सर्व डोर बिखे रमियो जे चक्र चैन चित्र आदि उदार मूरत अगाध नाथ अनंत आदंत न जानी अपिखा देव दुरंत देवो न जानही जे मरम वेदक देव सन को संकेश चंद्र पावहि न से जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत भुकारी शिशक्र मुख्यार सर्व सर्वतार के तर जापी जय जाप आदो गात जप अनाद वद ताप जंत्र मंत्र आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व डोर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानो ब्रह्म क्षत्रिय माए बैसरंग के बिखे विराजे सुदर भी वह नाए गुड़ गण भिन्न भिकर ब्रह्म शेख स्वरूप राज न से मद उर्द न भूमकाश अनूप जा जन्म कार्यक्रम न धर्म क्रम विहीन तिर चंद्र देव पूजा गुर के न अधीन सर्व सर्वत पतार के तर जानी है जय ज्योत शेष नाम सांस बन नित पूरन होत सो सुधन हटे सब सुर बिरदानो गर्भ गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकव गड़द गाड़ अनंत हार हार कयो सबो मिल नाम नाम दुरांत वेद भेद न पायो लख्यो न सेवक देव देव दानो गुड़ मानो जचन जाना जेब भूत भव भवान भुवत आदनाथ कानाथ अगन वाजले थले में सर्व ठोर निवास देगे नने स्नेह अभेनाथ जीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चहन बरन जाको जात पात न भेग रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आओ स्वामी आदि अपाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चन चक्र जागो चक्र जन आकार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को भूपरान दुष्ट कंजन छत्र बंजन परम प्रग परमात दुष्ट हरता सिष्ट करता जगत में जय गाथ भूत बब भवेक भविक भवान प्रमाण देव गांज आद अंत अनासरी पद परम प्रक अभांज धर्म के अनक्रम जेतक सकीन कतान पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ खच अपार हुमका जले थले मैं जमानी है जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता सिष्ट हरता काम दुष्ट हरना सिष्ट करना दयालाल गोविंद मित्र पालक सूत्र गालक दीन दयाल।

सर्व कर्ता सर्व दाता सर्व ज्ञान काम सर्व खंडन सर्व दान सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व क्रम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दान सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्टता विस्मृता रूप पार दुष्ट दंड पुष्ट खंड आद्य खंड भूमिका जले थले मैं जब जाप खंड श्रेष्ठ चार विचार जित जानी है सब चार आद्य पासरी दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म ज्ञाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र औ मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास संत कुमार गाय गाथ के सब पूछा कर भे मुख चार।

एक समय श्री आत्मा उजरियो मसी बैन सप्ताप जगदीश को शकल बीता दोहरा को आत्मा स्वरूप है को विचार कौन धर्म को कर्म है को सकल विस्तार दोहरा का जीतब का मरण है कौन स्वर्ग का नरक को सुगुणा को मूर्ता कहा तर्क अतर्क दोहरा कुनिंदा जिस है कवन कवन पाप का धर्म कौन जो को भोग है कवन कर्म।

कहा रंग राजा कवन हरक सुखा कवन को रोगी रागी कवन को तत महतवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा सिट को विचार कवन रिष्ट को पृष्ट है को सकल विस्तार।

आसरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उंदन रूप अते चन्नासर चंडन मंड बिहंडन धूम्र दर्शन मैक मते दान प्रहार नरक निवारण अधम उदार उड़ दे जय जय वसी मैं कासन वरदाना राम कपर्दन आदि प्रते डाउल डवंक बबर भवंक भुजा फरंक तेज बरंग नगुड़िया फांदे आयुध बांधे सन विमर्दन काल सुरंग अष्टाई चमक भूखण दमक असिक चमक फूंक फनंग जय जय वसी मैं कासन मर्दाना राम कपर्दन दैत जिनांग चंडासुर चंडन मंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनित मंकण जा फरंगण फणी फुकारण जो जीते सरदार बिब्रखण दुष्ट प्रखण पुष्ट प्रखण दुष्ट मथे जा जय वसी मैं कासन मर्दाना भूम आकाश तल उर्ध अधे दाम निप्रहास सोछप निवासन धृष्ट प्रकाशन गुड़गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन दैन राचन धर्मृते सुनत अचंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय उसी मैं कासन वरदान पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण सुध मते फणियर फुंकारण बाग बकारण शास्त्र प्राण साध मते सहति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल बहन तेज तुलांग जय जय उसी मैं कासर मर्दन भूम आकाश पताल जलांग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धुम धुकारन द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे क्रम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज

संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकाखण तुन तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद छे सुत्ता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय ओसी छत प्रकाखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलख भुजंगी तुन तुरंग तिसरे करकसा कुटारे नरक निवारे अधम

चक्रत निसंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनि प्रासे सुख सरनासे सुब्रत सुबासे दुष्ट क्रसे चंचला।

चाची प्रजन दुष्ट विरोध धन रोष अरोधन क्रोधपते धुमराज विध्वंसन प्रलय प्रजनसन जग विध्वंसन जुद मते जाल पाजयंती सदर मथंती दुष्ट प्रधान गाढ़ मते जय जय सी मै का सिर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खतरियान खतंगी अभय अभंगी आद अलंगी गगाद गते मृलाशी भंडन चक्षर दंडन तेज प्रचंडन आद बते सुर नर प्रतिपारण पति दुधारण दुष्ट दुष्ट निवारण दोखरे जय जय वसी मैं कासन मर्दन विश्व विधंसन श्रेष्ठ करे दामन प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकार खण सरवर वरखण दुष्ट पितर खण पितल तले अष्टायत बाण बोल बाण संत प्राण गुड़ गते जय जय वसी मैं कासन मर्दन आद अनाद अगाद प्रते दुख दो प्रपक्षण सेव करक्षण संत प्रदक्षण सुधारे सारंग सुनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल

खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संहारा है। पारन पायस गए पद्मापत वेद कते अभेद उचारा है। रोजी राज बलोकत राज करोख रुहान की रोजी न टारा है। कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भवान बना।

सतरुआ ने कचे लाभ दिखाओ तू तन एक न लगन पावा रखते अपनो करदा कर पाप समूह न बेटना पावा और की बात कहा तो ससु पेट ही के पट बीच बचावा जच भुजान सुदान देव अभे तुम्हें सभी कर जावा भूम का अस्पताल सतर जच

देश प्रयोग कर बेस तपोधन केस धरे न मिले हारे प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख करे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत का अंत के ताम सिधारे।

बांगे बंगाली फिर हांगे फिर अंगावाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलते हैं, रोह के रोहले मांग देश के मंगेले, बीर बांग सी बुंदेले पाप पंज को मलते हैं, गुखा गुन गावे चिन मचीन के तीसी सी आवे।

देव देवतान को सुरेश दान बान को महेश गंग धान को अभेश कहीं आते हैं। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कौ पन अधीन सदा अधीन कहीं आते हैं। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार।

माँ रूप के रासी अनासिका का मानिया जंत्र हुना जाजा की बापू न मायता की पूरन प्रभा की सुषटा के अनमानिया तेजो को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र।

रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सीता को वास के बुद्ध को घर है देवन के देव है निरंजन अभिव है अधेवन को देव है के

हिंगुला हिमाल गावे हबसी हल भी ध्यावे पूरी बिन पार पावे आसा ते अनास है देवन को देव माँ देव हो के देव है निरंजन अभय नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन बीन है निरंजन पर बीन है के सेवक अधीन है कटिया जाम जाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूमि के भुजैया है।

कामना के कर हैं कि बुद्धा को हर हैं कि सीता के साथी हैं कि काल हैं गुचाल के शीर कैसी शीरावत छाछ कैसी सतरानेर छपा कर कैसी छब कालिंद्र के कूल के हंस सियारों हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट

करके प्रकृति दे जदों दर्शन करोगे उस वेले प्रकृति दे विचों ये दरख्तां दे विचों पहाड़ां दे विचों झरनियां दे विचों ये दरिया दे विचों प्राकृतिक सोमे जिहड़े हन उहदे विचों तुहानूं मेरे दर्शनां दी प्राप्ति हो जाएगी। इंज सतगुरु महाराज जी ने उन्हां नूं भी तोरिया वह भी इत्थों गए। माता साहिब देवां जी भी जो हन वह जा करके दिल्ली ते माता सुंदरी जी दे कोल उत्थे जा करके उन्हां ने डेरा करना कीता। उत्थे साध संगत जी दिल्ली दे विच इन्हां मातावां जी दे याद दे विच तकरीबन दो तो तीन अस्थान जिहड़े हन उत्थे कायम दायम हन जिथे रह करके माता जी ने अपना जीवन बतीत करना कीता। यमुना पार दा अस्थान जिहड़ा है जिथे धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी ने सचखंड गमन करना कीता। माता जी का भी प्यारे उत्थे देवरा उत्थे समाधा बनिया होया है। सो माता जी जदों उस पासे गए उन्होंने जदों माता सुंदरी जी नूं भी ये वचन किया कि पातशाह जी ने वचन किया कि ये शास्त्रां की पूजा करना करो यदी अर्चना करना करो ये शास्त्रां दे विचों ही तुहानूं साढ़े दर्शनां की प्राप्ति होगी। तो उस तो बाद वह भी प्यारे इंजी करते सन रोज़ शास्त्रां की सेवा करनी है ते अमृत वेले उठ के बाणी का जाप करके शास्त्रां दे दर्शन करना जदों शास्त्रां दे दर्शन करदे उहदे विचों सतगुरां दे दर्शनां दी उहनां नूं प्राप्ति होया करदी है। जदों संगतां नूं इस गल का पता चलिया कि महाराज जी दे ये शास्त्र आए हुए हन ते नाल गुरु महाराज जी ने वचन भी करना कीता कि साडा इहनूं रूप जानना करो मेरा अंग जानना करो शास्त्रां नूं ते उत्थे सब तो पहला दिल्ली दे विच जिहड़ा अस्थान कायम होया उत्थे शास्त्रां नूं शुभायमान करना कीता। शास्त्रां नूं जदों सजाया गया शुभायमान करना कीता संगतां आ करके साध संगत जी उह शास्त्रां दे दर्शन करदे हन दिदारे करदे हन ते यही भावना होंदी है कि

वाहिगुरु जी दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को क्रोसो हित लाए पूरन क्रो ग्रंथि यह तुम्हें क्रो सहाय त्रिपंगी चंद्रिकाल जी की उस्तत खग खंड बिहार।

0: क्वार होए सब मिलेंगे बच्चे शरण हो होए
1: उठके स्वामलेश की तरपुरा पासार टंका बाजे ते का नेह टंका उतार चत चक्रवर्ती चत चक्र भुगते सुयम भव स्वं सरदास सुते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदाहंग संगे अपंगं भूते देख ते गुप्ते रूप सुभद्र जी आप तो नान गुरु गोविंद सिंह जी काल पुनि सहाय दरबार में तो दरबारा सचखंड

0: पहला सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मंड सत्य तेरे ले सत्याकार सत्य तेरे करण सर्विचार सत्य तेरा अमर सत्य देवाण सत्य तेरा गुण सत्य प्रमाण सत्य तेरा क्रम सत्य निशान सत्य तुदा के लख करोड़ सत्य सप्ताण सत्य सब जोर सच तेरी शब्द सच साला सच तेरी कुदरत सच पातशाह
1: नानक सच ध्यान सच जो मर्ज में सो कच

जुग जुग पैर उठाए ज्ञानी बुझेता है। सतयुग संतों का धर्म के रतवाओ, त्रत्र जते का जोर के रतवाओ, द्वापर तपे का